0: बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट जो 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सबै कनेक्टेड
1: हामी जन्मजात नै शिकारी हौ शिकारी
2: पुरै दैलेख मलाई चाहियो
3: VFX सिनेमा कुराही दस नारायणपुर सौडी कुला दाङमा एक्शन नायक विराज भट्टद्वारा अभिनीत भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ नेपाली कथानक चलचित्र रामना

0: कोकोनट सोकोनट भिटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी बिहान

0: वाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वाय नेट अब सबै कनेक्टेड।
1: नाक कान तथा घाटी रोग को उपचार सेवा अब सुवर्ण मेडिकल हल घोराही दाङ मा।
2: नाक कान तथा घाटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुवर्ण बुढामगर द्वारा प्रत्येक दिन बिरामी चेक जाँच भइरहेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। सम्बन्धित रोगका बिरामीले समयमै सम्पर्क गरी आफ्नो रोगको पूर्ण निदान गर्नुहोस्।
1: अन्य सेवाहरू
3: हाट जोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर कृष्ण तिमिल सिन्हा द्वारा दैनिक बिरामी चेक जाँच भइरहेको जानकारी गराउँदछौ।
4: सुगर थाइराइड तथा हर्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर एसएन यादव द्वारा प्रत्येक महिनाको दोस्रो शुक्रबार बिरामी चेक जाँच भइरहेको जानकारी गराउँदछौ।
3: बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दीप पोखरेल द्वारा दैनिक बिरामी चेक जाँच भइरहेको जानकारी गराउँदछौ।
1: प्रत्येक दिन डाक्टर नवराज केसीद्वारा बिरामीहरूको चेक जाँच तथा उपचार सेवा।
5: फोनबाट पनि नाम दर्ता गर्न सकिनेछ।
6: सम्पर्क सुवर्ण मेडिकल हल घोराही 14 आर्मी रोड। सम्पर्क फोन नम्बर 082-561-694। सम्पर्क मोबाइल नम्बरहरू 98-578-30-145, 98-478-30-153 र 98-49-41-944।

बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर मा तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट जो 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जड़ान को लागी गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल मा आपने लागी एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सबै कनेक्टेड।

0: बेस्ट प्रोडक्ट हरू कोकोनट सोकोनट विटा मिल्क बटर प्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अड्गुरी।

राम राम सन्जेक 5 बजे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबरमा शालिकराम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। कृषि पर्यटन पूर्वाधार विकास रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य ओ सुशासन हन प्राथमिकतामा धैकन लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2083-84 वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आन्द्राखल। प्रदेश प्रमुख कृष्ण बहादुर खर्तीमगर से प्रदेश सभामा सरकारको वार्षिक नीति ओ कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उद्यमशील लुम्बिनी ओ डिजिटल लुम्बिनी अभियान हन प्रदेशको रूपान्तरणकारी कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गरिन उल्लेख गरिरहल। कृषि हो बाली वस्तु विशेष सघन व्यावसायिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम हन थप प्रभावकारी बनीति लैजिन सरकारी सहुलियत मसक कृषक समान पहुँचका नीति लेजिना ओ प्रादेशिक कृषि एनको तर्जुमा कर्जिना फे नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख बा। सीमान्तकृत विपन्न मुक्त कमैया मुक्त कमलहरी भूमिहीन दलितर लगायतका समुदायको जीवन स्तर सुधार रोजगारी तथा आय आर्जन अभिवृद्धि सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कर्जिना नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख बा। प्रदेश स्थित हुलाकी मार्ग आसपासको क्षेत्रमा मासु दुग्धजन्य उत्पादन वृद्धि कला भैंसी प्रवर्धन कार्यक्रम हन निरन्तरता देजिना विषय फे नीति तथा कार्यक्रम परलबा। प्रदेश सरकारको काम कार्यवाही हेर्न सुस्त निर्व्ययी प्रभावकारी बनाएकला हाल कायम रहल 12 मन्त्रालयको पुनर्संरचना कैकन 2083 साउन 1 गते से मुख्यमन्त्री ओ मन्त्री परिषदको कार्यालय सहित 8 मन्त्रालय कायम गर्जिना नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख बा। उसनक काली गण्डकी करिडोर मध्य पहाड़ी लोकमार्ग मदन भण्डारी राजमार्ग सालझण्डी सन्धिखर्क ढोरपाटन सड़क गुरूसिंगे सन्धिखर्क सड़क दाङ प्युठान सड़क चकचकी रोल्पा सड़क सहित मार्ग ओ पूर्व पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति कर्जिना फे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख बा। लुम्बिनीका महिला उद्यमशीलता पहिलो नाराका साथ आत्मसत्कर्ती महिलाको नक्ला आर्थिक रूपमा सक्षम युक्त ओ आत्मनिर्भर बनाएकला स्थानीय तह समेतको सहकारीमा महिला उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन कर्जिना स्वदेश मजु उत्पादन हुलक वस्तु तथा सेवाको उपभोग हुन प्राथमिकतामा देजिना नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख बा। दाङको घराईमा पहिलो फेरा महोत्सव हुन रहल। महको उत्पादन उपभोग तथा बजारी कारण प्रवर्धन गर्न उद्देश्य से मह महोत्सव हुई लागलक हो। नेपाल मौरी पालक महासंघ दाङका आयोजनामा यह जेठ 13-14 ओ 15 गते घोराईमा 3 दिने महोत्सव हुई लगलग आयोजक जना राखल। जिल्लामा पहिलो फेरा यी प्रकारका महोत्सव आयोजना हुई लगलग कति आयोजक से यहाँ मौरी पालन क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण अवसरको रूपमा लिराखल। राष्ट्रिय कृषि आधुनिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाई दाङको प्राविधिक सहयोगमा आयोजना हुन मह महोत्सव मार्फत स्थानीय रूपमा उत्पादन हुन महको प्रचार प्रसार उपभोक्तामाझ एकर महत्वबारे जानकारी तथा मौरी पालन क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण अवसरको रूपमा लिगिल्बा। नेपाल मौरी पालक महासंघ दाङका अध्यक्ष दिनेश ओलीसे स्थानीय उत्पादन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार से ज्वार सहयोग पुग्न विश्वास व्यक्त गरिरहल। वहाँसे आइफे धिर उपभोक्ता से शुद्ध महको महत्व ओ मौरी पालन व्यावसायिक सम्भावना बारे पर्याप्त जानकारी नि पैलक बटुवा रखल। ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन हुलक मह गुणस्तरीय हुलसेथे वाकर उचित प्रचार हुई निशेकलक हुलगर्से अपेक्षित मूल्य ओ बजार पाइना चुनौती रलक उहाँको कार्य रहिन। महोत्सवमा मौरी पालन सम्बन्धी प्राविधिक जानकारी प्रदान गर्न उसनक यी क्षेत्रको चुनौती ओ सम्भावना बारे अन्तर्क्रिया तथा छलफल समेत गर्जिन रहल। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका चार मरलक राप्ती आँखा अस्पतालको शल्यक्रिया भवन प्राप्त गरिराख। नेपाल भारत विकास सहयोग अन्तर्गत अस्पतालमा शल्यक्रिया भवन निर्माण गरिगिलक हो। भारतीय राजदूत आवासको आर्थिक सहयोगमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ओ राप्ती आँखा अस्पतालको लागत साझेदारीमा 4,24,38,000 रूपियाँको लागतमा शल्यक्रिया भवन निर्माण गरिगिलक हो। अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्ण कुमार गिरीसे परिसरमा निर्माण गरिगिलक भवनसे शल्यक्रिया सेवा शुरू गरकलाक व्यवस्थापनको काम हुइतिरलक बटुवा रखल। निर्माण कम्पनीको इन्जिनियर विशाल केसीसे समयमा जो निर्माण सम्पन्न कैकन 2083 वैशाख 15 गते तुलसीपुर उपमहानगरपालिका हन भवन हस्तान्तरण गरिगिलक बटुवा रखल। अस्पतालको मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट सहायक प्राध्यापक डाक्टर रंजीत कुमार शाहले शल्यक्रिया भवन निर्माणसँग आवश्यक उपकरण ओ प्राविधिक तयारी पूरा हुइपास लौव भवनसे सेवा सञ्चालन गर्जिन बटुवा रखल। अस्पतालका सूचना अधिकारी बालाराम खड्काको अनुसार एक वर्षको अवधिमा मोतीबिन्दुको 2,444 ओ रेटिना कर्णिया ओ जलबिन्दु
सम्बन्धी कैकन 5,133 जनाको शल्यक्रिया गरिकिल बा उहाँको अनुसार स्थापनासे हालसम्म 43,00,000 सेफे दिउर सेवा गराइसे सेवा लेलक रियलबाट 2045 सालमा स्थापना हुलक अस्पतालमा हालसम्म 2,65,000 शल्यक्रिया गरिकिल बा उमध्ये 47,958 जनाको निशुल्क रूपमा आँखाको शल्यक्रिया गरिकिल बा लुम्बिनी प्रदेशको दाङ रोल्पा सल्यान प्युठान पूर्वी रूकुम सहित कर्णाली प्रदेशका पश्चिम रूकुम व सल्यानका नागरिक यी अस्पताल सेवा लेती आरल ओ दाङ बंगलाचुलीका खानी पीड़ित स्थानीय वासी हुँक आन्दोलित हुइलबाट स्थानीय तह टिप्पर व्यवसायी ओ पीड़ित स्थानीय बीच हुइलक सम्झौता लम्मा समय बितस्याका बेर फे कार्यान्वयन निहुलक कति स्थानीय हुकनक्से आशी खानी क्षेत्रमा सञ्चालन हुन टिप्पर अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ती थप आन्दोलित हुइलक हुइट विगतमा हुइलक सहमति तत्काल कार्यान्वयन हुइपर्ना माग सहित पीड़ित स्थानीय हुक आन्दोलित हुइलक हुइट बंगलाचुली गाउँपालिका 4 जुम्ले पानी स्थित 1 किलोमिटर कच्ची सड़क खण्ड कालो पत्रीकरण सम्झौता हुइलक 5 महिनासम्म कोनो प्रतिक्रिया अगाडि कुछ प्रक्रिया अगाडि निभरलक कति आन्दोलन करलक विकल्प निरलक स्थानीयवासी से बतुवा रखल ऊ क्षेत्रमा कालो पत्री करकलाक गत पुष 4 गते स्थानीय जनता सरकारवाला स्थानीय निकाय खानी ऊ टिप्पर व्यवसाय बीच सहमति हुल रह सक्कु पक्षको सहमति अनुसार 2082 फागुन मसान्तसम्म सड़क कालो पत्री कर सेक्ना कगिलसेफे अखिस्तमा कौन प्रक्रिया अगाडि भर निसेकलक स्थानीय हुकनक गुनासो रहल बाटिन हुइठा ताजु थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह काल सन्ध्याफे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सिक्ने बाटे अखसा खबर मसे समाचार कक्षक सक्कु संग्रहणसँग मैशालिक राम चौधरी विदा हिटु रिदे मध्यपश्चिम उनिटी रवि राम राम।

0: आवाज बस्ती नेपाल को आवाज आवाज ही को आवाज जो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 MHz।
1: स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वासिलो ठाउँ कोई कसलाई रोग लागे

0: 94.4 मेगाहर्जमा तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो मध्यपश्चिम।
1: ओखती साबुन को अर्को प्रस्तुति बहुगुणी ओखती आयुर्वेदिक तेल लामो अनुसंधान पछि आविष्कार भएको रुगा खोकी नाकबन्द जिउ दुखेको आदि सबैका लागि एकमात्र अचूक तेल जडीबुटी को शक्ति ओखती आयुर्वेदिक तेल मात्र रु 50 मा।
2: कुराही को लागि आधिकारिक विक्रेता भुसाल स्टोर हस्पिटल रोड कुराही दान फोन नम्बर 082-585-210 थप सम्पर्क का लागि हिमालय स्टोर बाल मंदिर अगाडि निरज स्टोर सब्जी मंडी नजिक र प्रवेश श्रृंगार दूरसंचार देखि पश्चिम तर्फ।
3: सम्पूर्ण विशेषज्ञ सेवाहरू अब एउटै छानामुनि।
4: वरिष्ठ हार्ट जोड्ने तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल यादव बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्रणाली घोराहीमा।
5: डाक्टर अनिल यादवद्वारा दिइने सेवाहरू:
4: हात खुट्टा भाँचिएको, हात खुट्टा झमझमाउने, ढाड कम्मर दुख्ने, हार्ट जोड्ने सम्बन्धी अपरेशन सेवा।
6: अन्य विशेषज्ञ सेवाहरू:
7: वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर अभ्यास पोखेलद्वारा बिरामी चेक जाँच सेवा,
8: वरिष्ठ सर्जन डाक्टर रमेश बस्नेतद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
9: नशा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध कुमार शर्मा द्वारा बिरामी चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
10: वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर विमला तिवारी द्वारा चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
11: वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विज्ञान केसी द्वारा बिरामी को चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
12: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर अनिश आचार्य द्वारा भिडियो एक्सरे सेवा,
13: साथै इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, इको, कल्पोस्कोपी, सिटीजी लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिका सेवाहरू।
3: सम्पर्क बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली सडक विभाग ओडालो घोराई जाँच फोन नम्बर 082-585-218।